एक निमख भी नहीं जी सकता। इसलिए मैं गुरु दे सिख तो बलहारे जावां जिन्हें मैनू परमेश्वर का वो नाम सुनाना है जिहड़ा मेरा प्राण सिखाई है और जिदे तो बिना मैं एक निमख नहीं जी सकता। गुरु रामदास महाराज जी कृपा

हे वाहिगुरु जी साढ़े ते तरस करो, अपनी भगती दा जाग आप ही साढ़े मना विच लगा दियो, ताकि असी नाम रंग दे विच रंगे, लोक सुखीए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले, जीवन बना सकीए। मुबारक है जो तुसी आ करके जुड़दे हो, बाणे और बाणी दे धारनी हो। जिन्हां ने हजे गुरु वाले नहीं बनना कीता, वह भी गुरु वाले बनो, बाणी दे रंग विच भी रंगो और खंडे दी पौल लैके ये पंज ककारां दे धारनी भी बन जाओ। इस गुरुद्वारा साहिब गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब लुधियाणा हर महीने दे पहले ऐतवार अमृत संचार हुंदा है, खंडे दी पौल तैयार हुंदी है। जिहड़े अमृत अवलाखी ने वो 10 बजे जिहड़ा महीने दा पहला ऐतवार है गुरु घर पहुँच करके खंडे दी पौल लै सकते ने। ते जिन्हां दे हजे मन नहीं मनदे अरदास बेनती करो, जदों वो समा आवे ते गुरु महाराज की कला वरत जाए, कृपा वरत जाए, असी भी बाणी ते बाणी दे धारनी हो सकीए। गुरु महाराज तुहानू सारियां नू चढ़दी कला वाला जीवन बख्शन। तुहाडा आउणा साडा आउणा मुबारक हो जाए। अज दी विचार करदिआं बेअंत गलतियां भुल्लां होईआं सतगुरु बख्श देण, अगे तो समत दे के निवाजन, गुरु पातशाह जी दे पावन बचन अपने हिरदे दे अंदर।

0: पते।
1: तू ठाकुर तुम पहर दास जियो पिंड संग, तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी, कोई न जाने तुमरा अंत उचे ते। सगल समगरी तुमरे सूत्र तारी तुम ते हो, सो तुमरी गत मित तुम ही जानी। नानक दास

गुर सागर रतनी परपुरे अमृत शाह संत चुगे नहीं दूरे हर रस चोग चुगे प्रभु पावे

आवण जान रहे गुर रखे सर्वर हंसा शोड न जाए प्रेम भगत कर सहज समय सर्वर मैं हंस हंस मैं सागर अकथ कथा गुर वचनी आदर सुन मंडल एक जोगी बैसे

साच स्वरूप वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर

चौथा हर के जन सतगुर सतपुरखा बिनो करो गुर पास हम कीरे किरम सतगुर शरणाई कर दया नाम परगास मेरे मीत गुरदेव मोको राम नाम परगास गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत अमरी रह रास रहाओ हर जन के वड भाग वडेरे जिन हर हर शरदा हर प्यास हर हर नाम मिलहिं त्रिपता सिंह मिल संगत गुण परगास जना हर हर हर रस नाम न पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मास्तक लिखया लखास धन धन सतसंगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम प्रगास राग गुजरी महला पंजवां काहे रे मन चितवहे उद्दम जा आहर हर जियो प्रया सैल पत्थर में जंत उपाए ताका रिजक आगे कर थरया मेरे माधो जी सतसंगत मिले सो तरया गुर प्रसाद परम पद पाया सूकी काष्ट हरया रहाओ जनन पिता लोक सुत बैंता कोय ना किसकी तरया सिर से रिजक स्वाहे ठाकुर काहे मन पौ करया उडे उड़ा मैं सै कौसा तिस पाछे बचरे शरया तिन कवन कलावे कवन चुगावे मन में सिमरन क्रिया सब निदान दस अष्ट सिदान ठाकुर कर तल त्रिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना परा व्रया सब निदान दस अष्ट सिदान ठाकुर कर तल त्रिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना परा व्रया राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख नरंजन हर पुरख नरंजन हर गम्मा गम्मा पारा सबतियाँ वहीं सबतियाँ मेह तुदजी हर सच्चे सृजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर दया बहो संतो जी सब दुख विसार नहारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाणा एक दाते एक पेघारी जी सब तेरे चोज बिडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हाँ तुद बिन अवर न जाना तू पार बरंबे अंत वे अंत जी तेरे क्या गुण आख बखाना जो सेव है जो सेव है तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा हर त्या वही हर त्या वही तुद जी से जन जुग में सुखवासी से मुक्त पाए जय नो हर ते आया जी
तिन तूटी जम की फांसी। जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी, तिन का पौ सब भगवसी। जिन सेवया जिन सेवया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत पंडार जी, पर बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहण तुद जी, हर अनेक अनेक अनंता। तेरी अनेक करें हर पूजा जी, तप तापहे जपहे बयंता। तेरे अनेक पढ़े बहु सिमृत शास्त्र जी, कर किरिया खट कर्म करंता। से भगत पले जन नानक जी, जो पावे मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जे बड़बर न कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू नहीं चल करता सोई। तुदे आपे पावै सोई वरत जी, तू आपे करह सो होई। तुदे आपे सृष्टि सब उपाई जी, तुदे आपे सिरज सब गोई।

आया। जिस नौ कृपा करें तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लादा मन मुगवाया, तुदे आप विछोड़या आप मिलाया। तू दरिया सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल, वियोग मिल विछोड़या संयोगी मेल। जिसनों तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाणे। जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर ना कोए। तू कर कर वेखे जाने है सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला, तित सर्व रड़े पहिले निवासा। पानी पावक तिन्हे किया, पंकजो मोह पग नहीं चले। हम दिखा तहें डूबियले, माने एक न चेत समूढ़ मना। हर विसर तेरे गुण गलिया रहाओ, ना हो जती सती नहीं पड़या। मूरख मुगदा जन्म पया, प्रणव ते नानक तिन की शरना। जेना तू नाही विसरया, आसा महला पंजवा। भई प्राप्त मानुख देवरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया। अवर काय तिरकते न काम, मिल साध संगत भाजे केवल नाम। श्रण जाम लाग पव जल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कै रहौ। जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जन्या हर राया। कहु नानक हम नीच करम्मा, शरण परे की रखो शर्मा। जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जन्या हर राया।

एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चाओ पाई, हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा, तब चरण मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सवय तुम काबो हो, आप दय मोहे बचाव हो, सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सिख सवय करतारा, मोरच्छा निज कर दे करिए, सवय रिनको आय संग्रिये, पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर ना ध्याऊं, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं, सेवक सिखो मार तारी है, चुन चुन शतर हमारे मारी है, आभाद मुझे उभरिए, मरण काल का त्रास निवरिए, जो सदा हमारे पच्छा, श्रीयस्तु जो करी हो रक्षा, राख ले ओ मह रखण हारे, साहिब संत सहाय प्यारे, तीन मन दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस्कंता, काल पाए ब्रह्मा बपथरा, काल पाए शिव जो अवतरा, काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा ज्योतियो, जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है तहे हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव देंद जक्षण उपजायो, आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिसही को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सवारी, सेवकन को सेवगण सुख दियो, शत्रण को पलमो वध कियो, कट कट के अंतर की जानते, भले बुरे की पीर पछाणते, चिंटी दे कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछन्ने, कट कट के बड़ बड़ की जन्ने, जब युद्ध करख करा कर तारा, प्रजा तरत तव देहे अबारा, जब आ करख कर तुह कब हूँ, तुम मैं मिलत देहे धर सब हूँ, जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे, आप अपनी बूझ उचारे, तुम सब ही ते रहित नरालम, जानत भेद भेद अर आलम, ड्रंकार निर्विकार निरलंब, आदि अनिल अनाद असंभ, ताका मूड़ उचारत पिता, जाको भेव न पावत बिदा, ताको कर पाहण अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत, महादेव को कहत सदा शिव, ड्रंकार का चीनत नह पिब, आप अपनी बुदय जेती, बरनत भिन्न भिन्न तो है तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, कि विद सजा प्रथम संसारा, एक कै रूप में अनुपस रूपा,
रंक भयो राव कहीं पूपा, अंडय जे रसे तज कीनी, उतपज खाण बहर रच दीनी, कहो फूल राजा हवय बैठा, कहो सिमट भयो शंकर अकैठा, सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव, आज जुगाद स्वरूप स्वयंभव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखे अवारे असिख संघरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच करो रण गाता, जे अस्तुताव शरणी परे, तिनके दुष्ट दुख तुहाय मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को इक बार ते है, ताके काल निकट न है, रक्षा होए दाहे सब कल्ला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्कल्ला, कृपा दृष्ट तन जाहे न हरयो, ताकि ताप तन कमय हरयो, रिद्ध सिद्ध घर्म सब होई, दुष्ट शाश वाय सके न कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फांसती ताहे उबारा, जिन नार नाम तिहारो कहा, दर्द दुष्ट दोख तेरा, खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी, आप हाथ दे ले हो बारी, सर ढोर मो हो सहाई, दुष्ट दोख दे ले हो बचाई, खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी, आप हाथ दे ले हो बारी, सर ढोर मो हो सहाई, दुष्ट दोख दे ले हो बचाई, सोइया पाए गहे जबते तुमरे, तबते को आंख तरे नहीं अन्यो, राम रहीम पुराण कुरा, अनेक गहे मत एक ना मान्यो, सिमृत शास्त्र वेद सब है, बहुपेद कहे हम एक ना जान्यो, सीरियस

दोहरा सगल दुआर को छाड़ गए गए हो तुहारो द्वारे बही गहे की लाज अस गोविंदास तुहारे सगल द्वार को छाड़ गए गए हो तुहारो द्वारे बही गहे की लाज अस गोविंदास तुहारे राम कली महला तीजा अनंत इक ओंकार सतगुर प्रसाद अनंत पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सह सेती मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आइया शब्दो तंगावो हरी केरा मन जिनी वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब में सारना अंगीकार ओ करे तेरा कारज सब सवारना सबना गल्ला समरत स्वामी सो क्यों मनो बसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नहीं घर तेरा करता तेरा सब किच है जिस दे है सो पावे सदा सिवत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वस्याओ

सच्चानाम मेरा आधारो, सच नाम आधार मेरा, जैना भुखा सब गवाइया, कर शांत सुख मन आए वस्या, जैनों इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर्बान कीता गुरु बिट्ठो, जिस दिया एह वड़ियाइया, कह नानक सुनो संतो हो, शव धरो पे हारो, सच्चा नाम मेरा आधारो, वाजी पाई शव तित घर सुभागे, घर सुभागे शबद वाजी।

तिथिखर अन्नहद भाजी आनंद सुनो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल बसुरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पय सरसे पूरे गुर ते जानी सुनते पुनी कहते पवित सतगुर रहा भर भूरे बिनोहंत नानक गुर चरण लागे बाजे अनहद तुरे सुनते पुनी कहते पवित सतगुर रहा भर भूरे बिनोवंत नानक गुर चरण लागे बाजे अनहद तुरे मुंदावणी महला पंजवा थाल विच तिन वस्तु पइयो सत्य संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे आधारो जे को खावे जे को पुंचे

तम संसार चरण लगतरी है सब नानक ब्रह्म पसारो श्लोक महला पंजवा तेरा कीता जातो नाही मैनो जोग की तोई मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पाए ओई तरस पाया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिले आ नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवे हरे आ तरस पाया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिले आ नानक नाम मिले ता जीवा।

सुन मंडलिक जोगी बैसे नार ना पुरख कहो कहूं कैसे त्रिपवन जोत रहे लिवलाई।

0: पहला करोड़ सच्चे सब तान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची साला सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच दैन सच
1: जो मर्ज में सो कच निकच महला पहला
2: वड़ी वड़ियाई जा वड्डा नाम वड़ी वड़ियाई जा सच नाम वड़ी वड़ियाई जा निचल थां वड़ी वड़ी जाने वाला वड़ी वड़ियाई पूजा सा पाओ वड़ी

0: कस फारे कर आज, फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी, छीनत बस्त्र दीन बोसाज, सो दामा अपदा ते राखिया, गनिका पड़त पुरे तह काज, श्री सतगुर सो परसन कल जुग होए, राखो दास पाठ की लाज।
1: चोलना

बचन गुरु रिद धरो पंच भू वस करो जन्म कुल उदरो द्वार हर मानियो ज्योत सब सुख इत उत

हम अंध ले अंध विखे बिखराते, क्यों चाले है गुर चाली, सतगुर दया करे सुखदाता।

अनंत लाटू माधानी आन गा पंखी पौंद लैना सा सूए चाड़ पवाई जंत नानक पौंद गणत न अंत बंधन बंद पवाए सोए पया कृतन चै सब नच नच।